तब चर नन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम काबू,

स्वरूपा रंग पयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं स्मट पयो

तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणकाता जे असुस्ता सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवे मरे पुर

सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाए न हर हूं, ताके ताप तनक मैं हर हूं। रिद्ध सिद्ध कर

न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा

सहज सेती मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दों ता गाव हो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख

राम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारु, जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारु। ए वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उरता।

शासन कर दिया। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी से आए वार्ष भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से वैसे आए अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्होंने आव्याता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाचिया के पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पार दर दाते अंतर के खालसा से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन चख्या दे चलाई देख वाही देख निढ कीता देना प्यारियां सत्यारियां की कमाई दते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म ये सीध दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाइया चरखड़िया से चढ़े आ रहे नच रहे हैं गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी ने कैसा सत्संग निभाया तेना की कमाई दते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। वाहगुरु आ रहे दते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चेता है चित आमण का सद का सर्व सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देख देख की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखांदा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की आज पंथ सदा सिहाई दता जियो गुरुद्वारा निरकाना साहब पंजा साहब और गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आप जी पंथ पिछोड़िया गया है उन्होंने कोई दर्शन दार तो सिवा संभाल दता अपने खालसा जी ने बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु न्यासरिया न्यासरे गुरु धन धन गुरु तार पिता जी हो आप चैन कामना दरदास सिंह दार जी आपने बख्शिश की आप चैन पितर गुरबाणी सुखमणी साहब के संपूर्ण पाठ दता इस वे संध्या समय जान के आप चैनल सोदर रहरा सब पाठ की कृपा करो वो यहां भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच कण पुराण करो बाणी का भाव सारिया संगतान हिरदा ने विचारी कृपाता करो जी अगो तो शुद्ध पितर बाणी विचारी बल बुद्धि बख्शिश करो आज इस खुशी में आप दिया बख्शिया दाता भी पितर कर आप शारी देगा तैयार कर हस्तार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संकत रसना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी आप पितर नाम जपे बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश विदेश रखा बख्शिश करो जी ये गरीब नवाज बख्शिश करो आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलिया सिंह सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटिक बख्शो अरे सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शे पालता करो गरीब नवाज कृपा कर दतार जी आप दी बख्शिया दाता जो लंगर चुट सवारियां प्रवान कर दी गुरु गरीब नवाज ऐसे वे दर से आई साफ संत हाजरी दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संतों का दर तेरे फिर पेटा प्रवान शुभकामना संपूर्ण करो जी गिरिराज आदि चरण का जगदास ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी आदि दर के सेवादार मिस्टर डैरिक गृहस्थी गिरिराज जो गवर्नर की इलेक्शन लड़ने का तार बताया जी तो कामयाबी वास्ते चर्ज करा वास्ते बेनती करते आपके चरण हाजिर होने का तार कृपा करो मेरे पर मिस्टर डैरिक गृहस्थी ने सेत रखना अपने सेवक का सहायता बख्शो अपने सेवक में कामयाबी बख्शन की बालता करो गुरु जी गिरिराज मेरे पर सच्चे पातशाह जी दर्तियां की आप लाज पद रखो गिरिराज खालसा कम खालसा कौम पंथ नपा छाई खालसा पंथ सिख कौम एक दस भाग पे आज बख्शी करके सत राज बख्शो चंदना जोड़ो गुरु का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह कबालता करो जी गुरु गरीब नवाज कृपा करो दूर दराज कर बैठिया लाइव कटा की सरण करियां सारी संगत हाजिरियां प्रणा करो कड़ियां लिख लो तारा भी कृपा की संगत उन्होंने बख्शे संगत आदि चरण धनबाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेहद माया ऑनलाइन गुरु कर गुरु घर सेवा सिंह संगता माया बेटा के चरण प्रवान करो बचत सब कमाइया सबल करो कार्यवाद बदतार सब संगत दुभकामना पूरी करो जी और मेहरान करो सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो पितर को नमें बख्शी करके प्रबंध अज के शाम की कथा की दुराजा से आगा बख्शो रेंदे घर सुहार के चरण सुना दी बनाओ सही प्यारे मेरे जिन्हें बनाओ का नाम दिता नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

सतगुरु पाए मन तन अंतर वस दुख नाश होए हाथ दे आप रख व्यापै पौ ना कोए सो कहो टल गुर सेवी है अहने सुसहज सुभाए दर्श

वै नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहि मिटावौ सिमरौ जास विसंबरी कै नाम जपत अगंत अनिकै वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर किन्ने राम नाम इक आख्यर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक दर्श तुहारु नानक उन संग मुहे उदारु सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला सी सिमरह जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाई प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माहि समाए प्रभ जी बसह सात की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन अनंद कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हरनेरे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिन को प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हार सिमरन कर।

नीच चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हुवे अत भारी हर को नाम किन माहे उदहारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार गयो जात केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याय नानक गुरमुख परम गत पाइय छूटत नहीं कोट लकबाही नाम जपत है पार पराही अनिक बिघन जय आये सिंगारै हर का नाम तत्काल उदारै अनिक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावै विश्राम ओ मैला मल कबू न तूवै हर का नाम कूट पाप खूवै ऐसा नाम जपु मन रंग नानक पाइये साध कै संग जे मार के गन जाहि न कोसा हर का नाम उहां संग तूसा जे पैडै महान दुगुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महाप्यान तपत बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहा त्रिखा मन तुझ आकर्ख तह नानक हर हर अमृत बरख भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद सात कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नोदान मन तन रंग रत्ते रंग कै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोजोग हर नाम जपत कछ नाहे वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन कुआ प्रभ दीना हर हर जन कै उठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत रिद्वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संगवड भागी पाइय संत की सेवा नाम त्याय नाम तुल कछ अवर न हुए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्व टंडोल
पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मते फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान हो में बहुरतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव महा उदास तपी सरथी वे अग्न वाहे होमत प्राण कनिक शुभ है वर भूमदा न्यवली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे ताओ पी हो मैं न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही मन कामना तीर्थ देह छुट्टै गर्भ गुमान मन ते हुट्टै सोच करे दिन सरात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखिया टरै जल तो वै बहु देह अनीत शुद्ध का हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत स्याणप जम का पौ व्यापै अनिक जतन कर त्रिशन त्रापै भेख अनेक अगनि बुझै कूट उपाव दरगै नहीं सिजै छूट सनाही उपयाल मोह व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जमडानै गोविंद भजन बिन तिन नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाय नानक बोलै सह सुभाई चार पदार्थ जिको मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लूरै साध संगे होमै चूरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मै पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै विमान वापस को जो जाने नीचा सू गणिय सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को धन तेरो नाओ निथावे को नाव तेरा थाऊ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा कौ देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे आपन सांगा प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कबर न जान सुकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सास संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम पला हर का नाम जपहु जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जा सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार एयानिया सो प्रभ सदा सुमाल जिनकी आतिश्चित रख नानक निभही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोगन भोजन सुख सूद बिरद पयाओ पर साख सैन मुख पयाओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीजै यह प्रसाद धारु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै ये प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पव कमुला ये प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसै त्याग वर संगरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नानक काट लेहु प्रव्यापे आदंत जो रख नहार तिस्यों प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावै तास्य मूड़ा मन नहीं लावै जूठा कुरसा सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे
जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे विसार मुग्ध अजान सदा सदाय भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौडी संग रचै सा छोट झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत भस्म संग हुए अंधकूप में पतत विकराल नानक काट लिहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक प्रचार करे दिन रात बाहर भेख अंतर मलमाया छप्स नाही कछ करे छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान सुनान अंतर व्यापै लोप सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह अथाहा जाके अंतर बसै प्रभ्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लिहु ओढ़ निभावै कहां बुझारत बुझै डूरा निष्कहियै तू समझै पूरा कहा विष्ण पद गावै गुंग जितन करै तौ भी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुआवै ना चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के ग्रे भीतर बसै अनद केन माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दा सदा कुरबानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लग हयान सुआए नानक न सी जई बिना वै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण विकोट गवावै एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहु कह करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताकू की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत साहू अपनी दे रास खात पीत बरतै अनद उलास अपनी अमान कछ बहुर साहू ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीताप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस किसी आज्ञा रखै प्रभ की आज्ञा मानै मातै उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया सो रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चलन हार लपट रहो तै अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्त वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या वास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह हुवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाई मेघ बिना ज्यों खेती जाए
गोबिंद भजन बिन वृथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम धन धन तेजन जे कट बस्यो हर नाऊ नानक ताकै बल बल जाऊ रहत अवर कछ अवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख न काऊ पीन अवर उपदेशय आप न करै आवत जावत जन्मे मरै जिसका अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आप मानै आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत जिस भावै तिस लै लड़ लाए थान तनंतर रहा सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन वाहे जेह प्रसाद सुगंध तन लावै तिस कौ सिमरत परम गत पावै जेह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तु सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दर कह मान पाव है नानक पत छेती कर जावै जे प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिरौला रहत

तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठ सत्य सह त्याई, तिसह त्याय जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै, जे प्रसाद करह पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सा सा चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप, जे प्रसाद तेरी निक्की जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत रहे, गुर प्रसाद नानक जस कह, जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पिखे बिस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सह सुमाव है, ऐसा प्रभ त्याग वर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कौ जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता स्योराच, जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाऊ, आप गावाए सो हर गुण गाऊ, प्रभ कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मतु उत्तम होए, सर्व निदान प्रभ तेरी मया, फू कछु न किन्हू लया, जित जित लाभ होते

साजना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुखु जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान, साध के संग बुझे प्रवनीरा, साध संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी, साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेनु, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतू तावे, साध संग स्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिनु, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्नु, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैरु, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हों ताप, साध के संग तजै सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग न कबू तावै, साध के संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त गोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध के संग बसै थान उच्च, साधु कै संग महल पहुँच, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को बरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट तो होत निहाल, साध के संग कलुकत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला, साध संग विचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै ब्रह्म मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै ते तब क्या, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार।

0: साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक, मन साचा मुख साचा सोय, अवर न पेखै किस बिन कोए, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल्फवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीरजेक, ज्यों बसदा को खुदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का इह गुनाओ, नानक ज्यों पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना तम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी के कछ बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधारु, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवारु, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन बाहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखानै, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै, ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुख जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक, उरतार है जो अंतर नाम सर्व में पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओवर सगल निस्तार है अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना वर्ष मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पेख्या नेत्र साध की टहल, संसंग हेत कर न सुने काहू के निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हर मन की बासना, मन ते टर इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत, नान कूट मदे को ऐसा पर सुबह सुनो सोजी, सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हु वह नहीं कर्म तिस वैष्णु का, निर्मल धर्म का हु फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वर नाम जपावे, नानक वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम कर पूजे, सगल पार ब्रह्म सास सुन पापा मल खूब है, तुष भगवती की मत उत्तम हो, वह भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तने अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म है शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का बदे जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नयावे, वेद प्राण सिमृत भू जय मूल सुख मैं जाने, स्थूल चौवरना को देव देश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सा संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उतारै बस प्रेत मुक्त पात्र को तारै सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाव आहु जुगत कितै न पाइए धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसन त्रि आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दासर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूची पर सगल संगातम दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तमता वै जीवन मुख सुख आवै तैसा हरक तैसा शोक सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख है तैसा तिन आओ आपे करण करावन जोग प्रभाव है सोई फुन भोग बसुर आप अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तुत करै अनेक जनंत न पारावार नानक रचना प्रवरची बहु विधनिक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट मन भ्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारै कई कोट कबका विचारै कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते कंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंधा ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिगातम निकोर कई कोट पर धर्म को ही रह कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रम आहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाव तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट से जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए कई कोट पवन पानी वै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र कई कोट देवदान इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपने सूतार है नानु जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट की रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा सब ते नेर सब ते दूर नानका बलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव मरह कई कोट भोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल थक पाहे कई कोट की यतनवंत कई कोट माया मह चिंत जय जय भाणा तह तैरा के नानक सब किच प्रभ कह हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खो जनते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसर पासार सदा सदा के कंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते हो ब्रह्मा समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे कु नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे तुमरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ संभारी नान कोई परमेश्वर के प्यारे स्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई नान किस बलिहार ने जल तल मही अल सोय अष्ट बदी करण करावन करने जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं थाप थापन हारा तने किछ पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पत दुधारै आप करै अपन विचारै दुआ सिरिया काप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवरण आवै कौमानुक ते क्या होय आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होय ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अन जानत विख्या मैं रचै जे जानत अपना बचै भरमे भूला दै दिस्तावै निमक माचार कुंड फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जान ना मिले किन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका तिस कछु न आवे तिस तत्काल दह तिस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीस ताका लेखा नगन है जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जीव दिख बढ़ाई इसका बलाई साथ करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योत स्वभाव है सोई फुंथी कब ऊंच नीच में बस है कब हूँ सोग हर खरंग हस है कब हूँ निंद चिंद विहार कब हूँ बकाश पयाल कब हूँ वृत्ता ब्रह्म विचार का नान का मिला वनहार कब हूँ नृत्य करे बो पात कब सोए रह दिन रात कब माँ क्रोध विकराल कब सर्व की हो त्रवाल कबू हो बट राजा कबू पे कारी नीच का साजा कबू कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रभु रखे तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हो पंडित करे बख्यान कबू मोहन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू से साधिक मुग्ञान कबू कीट हस पतंग हो जी यानिक जुन पर मैं परमिया नाना रूप चं स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिव निचावे जो तुस पावे सोई हुए नानक दूजा वर न कोय कब हूँ सा संगत त्यो पावे स्वस्थान ते बौर न आवे अंतरो ज्ञान प्रगास स्वस्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रत्य करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल मै जल आय कटाना त्यो ज्योति संग ज्यो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आया अपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती हो स्वान जो जान में जो बनवंत सो हो विष्टा का जनता उसको करवंत कहा वह जन्म मरै बो जुन परमा वह धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकिया मुक्ता गै सुख पावे धनवंता वे कर गर्वा वह तृण समान का संग न जावे बहु लश्कर मानु कुपर करे आसु पल पीतर ताका हुए बिना आसु सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हो जाए पसमंत किसे न बदया पहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुर प्रसाद जा का मिठा विमान सो जन नानक दर गय परवान कूट कर्म करे अवतारी श्रम पावे सगले बिरतारे अनिक तपस्या करे अहंकार नर सुर फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नि द्रव है हर दर गय को कैसे गवै पस को जो भला कहा वह तिसे भलाई निकट न आवे सर्व किरण जा का मन हुए कहु नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछोए तब इसको सुख ना ही कोए जब ए जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे कुबैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लग कोट तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे निक भोग भिख्या की करे न तृप्तावे खप खमरे बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ बिरते सब का जय नाम रंग सर्व सुख हुए बड़ भाग्य किसा प्राप्त हुए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप आप प्रभ सोए जो किछ गिनो सु अपने रंग सब ते दूर सबु कह संग बूझे देखे करे विवेक आपे का पै अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रहा सुनाय आप उपदेश समझय आप आपे रचिया सब के साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते पिन कहो किछु इथांत नंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौतक करे रंग आपार मन मैं मन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गिने वकियानी सच सच सत सब किन्ना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरे रूपा सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर सो जने उदरण हार संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदि संत कै दुखन हर जा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संसंग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख भवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्ब जोन पाए संत कै दुखन तृप्त जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब कुछ लै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहि नान संत भावै थोए भीगत पाई संत कनिंदक मात ताई संत कनिंदक किन टिक न पाई संत कनिंदक महात्यारा संत कनिंदक परमेश्वर मारा संत कनिंदक राज तीन संत कनिंदक दुखियार दीन संत कनिंदक को सर्व रोग संत के निंदको सदावे जोग, संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत भावै तो पापी हुए मोग, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र, संत के दुखी को डान लाग गया, संत के दुखी को सब त्याग गया, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नान संत भावै तां ले मिलाए, संत का दुखी अज बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी कवर न रख नहार, नानक संत भावै तां ले उबार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापै, संत का दुखी छुट्टे केला, ज्यों बुआड़ तिलके तुम्हें दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी न मरे न जीवाइए, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठचलै निराशा, संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा भावै ऐसा कोई होए पै, किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोई, सब कर तिस क्यों करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभु की उसत करो दिन रात, सत्य आवु सास करा, सब कुछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिष्णु कृपा करे दिशा पर नाम देवड भागी, नानक जन से श्लोक तजो सियान सुरजन हो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए, स्पदी मानु की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक कह भगवान, जिसकै दिया रह अघाय, बौर न तृष्ण लग गया, मारे रखे कुआ, मानु कह किछ नाही हाथ, जिसका हुक्म भू सुख होए, जिसका नाम रखंड पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लाग गए कोई, उस्तद मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसन अमृत पीयू, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनु पेख ठाकुर का रंग, सासंग बिन सह सब संग, चरण चलु मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गय नान पूजन मथा विडभागी, ते जन जग माए, सदा सुधार के गुण गाए, राम नाम जो करै विचार, सेतनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै तुत कियो सो जी जानै, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जानै, गुरु प्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सास संग हर हर जस कहत, सर्व लोक त्यो हर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बखियान, दृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जी जन किया सा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिसमन भूख, नानक तिसन लागै दुख, जिसको हर प्रमन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं दुलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करै, सो सेवक को किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सो दत्त सीजिया, गुरु प्रसाद था सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, नै के जन्मे नै किच मरै, आपन चलता आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मै, आपन एक जुगत राज थाप थाप, अविनाशी नाही किछ खंड, धारण तारे हो ब्रह्मांडल, खपे पुरख प्रताप, आप जपाए तन नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जप भय निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़ भागै, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिलपुर को उत्तम करमान, जो किछ करै सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुवै सो होइ, करनै हर पछानै सोइ, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे दिसमाय समायो, सुख निधान उन्हु बनियाय, आपस को आप दिनु मानु, नानक प्रभ जन एको जान, श्लोक सर्व कला भरपूर, प्रभ बिरता जानन हार, जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार, अष्टपदी टूटी गांडन हार, गोपाल सर्व जी आए अपे प्रतिपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरता कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अवनासी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु न होए, जिस तो प्राणी लुचै कोई, तिस वे नाही तेरा किस काम, गत नानक जपे कर नाम, रूपवंतो नाही मोह है, प्रभ की जो सगल घट सो है, धनवंता हुए क्या को कर वै, जा सब किस तिसका दिया, दर वै सूरा जे को कहा वै, प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को हुए वह दातार, तिस दिन हार जाने गावार, जिस गुरु प्रसाद तुटै हो रोग, नानक सोजन सदा रोग, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਸਮਨ ਜੋ ਪਾਖਾਨ ਆਪ ਛਿੜਕਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾ ਜੋ ਮਾਹ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਚੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਗਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਜਾਨ ਕੌਣ ਵਸਤਾਈ ਤੀਰੈ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਤਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਨ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋ ਔਲਾਦ ਕੇ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹਰਦਰ ਗੈ ਸੋਏ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸੁਧ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਤੋ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਉ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਅਨਿਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਦਰਿਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵ ਤਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸਤੀ ਮਾਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸਕਾ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੁਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਾਨੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤਿਉਚ ਨਿਰਮਲ ਏ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਸ ਜਿਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗ ਸੁਨਿਆ ਤਿਹ ਲੋਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਹੋਏ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿ ਤੋ ਸਚ ਹਿਰਦੇ ਸਚਾ ਆਕਾਰ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਰੇਕ ਨਰੰਗ ਕਿਸ ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬੁਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈ ਰਾਗ ਮਾਨੁਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਵੇ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ ਸਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਹਿਉ ਨਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਅਨੰਦਰੂ ਮੰਗਲ ਸਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਦੁਖ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਯੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਬ ਮੈਂ ਤਪਿਸਤਰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਇ ਤੇ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਗਿਨੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪੁਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਿੰਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵੈਸੇ ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਿਨ ਮਰੈ ਫਿਰਿਆ ਵਹਿ ਜਾਇ ਉਜਨੀ ਜਿਸ ਕੇ ਸਥਾਨ ਜਾ ਸਜਨਾ ਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਕਰੈ ਕਿਰੰਗ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਕਿਨ ਮਾਹੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਦਿਸਕੇ ਸਭ ਦਿਸਕੇ ਠਾਉ ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਓ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲਾਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗੁਦਰੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਇ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਾਤ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਇ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਵਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜੰਜਾ ਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਹਾਰ ਵਰਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀ ਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭੈ ਬਿਸਮਾ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸਾਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏ ਕਿਲੇ ਵਿਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ
1: ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਾਸਾ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਸਾ ਦੇਖਣਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਉਣਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਾਸਾ ਅਵਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਗਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਿੱਧ ਸੰਤਾ ਬੂਜਣ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਜਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਵਾਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪੈ ਤੇ ਨਿਰਪੋਹੇ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਇਲੇ ਬਸਤ ਗੜਾਈ ਤਾਂ ਕੋ ਭਿੰਨ ਕਹਿਣ ਜਾਈ ਬੂਜੇ ਬੂਜਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਵਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕਿਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੇ ਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ ਨਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾ ਸਾ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਿਲ ਪਾਇਆ ਨੇਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੇ ਭਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨਾ ਕਾੜ ਤਿਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖ ਦੇ ਕਰਾਤ ਮਾਣ ਯਤਨ ਕਰਤ ਬੋ ਭਾਤ ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤ ਬ੍ਰਿਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਬਲ ਖੁਡਾਣੀ ਬਾਰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅਮਰ ਤੇ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ਼ਕ ਔਰ ਨਹਿ ਰਚਾਇਆ ਨਾਮ ਤਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਉ ਸਮਾਣੇ ਊਠ ਬੈਠ ਸੋਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨਕੇ ਸਰਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇ ਬਦ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨਕੀਨੀ ਦਾਤ ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਈ ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾਉ ਕੁਸ਼ਾਨੇ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੂ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਣ ਜਾਨੂ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਹਜੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਉਠਲੇ ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸੋ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ ਔਰ ਸਿਆਣ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਨ ਤੇ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਇਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿਖਤਰੇ ਨਾਨ ਕਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਉਠਪਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸੇ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲਹਿਰੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਖ ਬਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖੋ ਨਾਮ ਤੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਖ ਗੁਰ ਭਾਗੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਖ ਜੋ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨਵੇਂ ਸੇ ਆਪ ਕੋ ਕਰ ਕਚਨਾ ਜਨਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਸਾ ਧਿਆਵੇ मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रात सेवा करतो है निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जे साफ करे नान सो सेवक गुर की मतले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु हृदय नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्वधार जी का दाता आठ पैर पार बढ़ाता ब्रह्मे जन जन्मे पार ब्रह्म एक नहीं परम सहस्यण त्याण जगे नानक ऐसा गुरु पागी पाई सफल दर्शन एक पनीत परस चरण कर निर्वरित पीठ संग राम गुरवे पार ब्रह्म की दर्गे गवे सुनकर बचन कर न गाने मन संतोख आत्म पत्याने पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र अवर दृढ़ एक संत गुण बेन कीमत नहीं पाए नार जिस पावी ते लय मिलाए जीवा एक उस सतनेक सात पुरख पूर्ण विवेक काहू भूल न पौष प्राणी अगल गोचर प्रभु निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अन भगत बंधनित करे चरण कमल हृदय स्वरे सत बलिहारी सतगुरे अपने नान जिस प्रसाद आए सब चपने वर्ष पावे जन कोई अमृत पीवे अमृत सोए उस पुरख का ना ही कदे विनाश जाके मन परगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच दे शिव को दे वो माया के संग न लीप मन में रखे हर हरेक अंधकार लीप रगासे नानक परमो दुख चेतना से तौत माए ठाण वर्ताई अंध पया दुख नाटे पाई जन्म मरण के मिटिया जैसे साधु के पूर्ण जैसे औ चुका निरपोह बसे सगल व्याज मनते खे नसे जिसका सा तिन कृपा तारी सा संग जपना मरारी थे तपाई चूके परम गुण सो नानक हर रज सरण निर्गुण आप सरगुण पी हुई कला तार जिन सगली हुई अपने चरित प्रा बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोई सर्व निरंतर इको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रकाश साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक सात न चाले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक्यो तन सार पली संज ना मिल करो विचार एक सिमर ना उदार और पाप सामीत बसारो चरण कौन हृदय में उतारो कर्ण कारण सो प्रसुरत अजड़ कर कहो नाम रत यो तन संचो हो पवंत संजना का निर्मंत एक आस राखो मनवाहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुटतावे सो तन सेवा ते पावे जे सो को निसबाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सोभा को करे पढ़ी करनी सा सोभा पजर की सरनी अनुक पावे रोगन जाए रोग मिटे हरब खदलाए सर्वधान में हर नाम निधान के सर्वधान में हर नाम निधान ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ ਦੇ ਦੇ ਤਾਵਤ ਆਵੇ ਟਾਏ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬਸੇ ਸੋਏ ਕਾਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਸੁਖ ਪਾਓ ਪੋ ਪਿੰਡ ਸੇ ਪੂਰਆਸ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੇ ਅਬਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮਪਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾ ਗਵਣ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮਰਤ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਰ ਅਣਕ ਪਾਵ ਨਾ ਛੁੱਟਣ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਵਾਸ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬਚਤ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸਾਗਣ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਤਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੁਟਾਵੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਟੰਬਰ ਬੰਤਾ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕੌਣ ਸੁਨਾਤਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਾਰ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕੌਣ ਸ਼ਟਕਾਰ ਆਸਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਝੂਠ ਸਵਾਰੀ ਜੀਣ ਦੀਏ ਇਸ ਬੁੱਝੇ ਨਾ ਬਗਾਨਾ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨ ਪਛਾਣਾ ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੈ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਣਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਵਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲਬਖ ਜਾਏ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਸੁਣ ਕਹਿ ਰਸ ਕਰ ਪਾਓ ਸਾਰ ਪੂਤ ਸਤਰ ਕੋ ਨਾਓ ਸਹਿਜ ਸਪਾਏ ਨਾਨ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਣਸ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਵਿਖ ਪੈਲ ਹੋਏ ਚਿੰਨ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਥ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾੜ ਸਿਆਣ ਸਗਲੀ ਮਣਾ ਸਾਹਸ ਪਾਵੇ ਸਚਨ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਚ ਕਰੋ ਬਿਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗੇ ਜੇਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਾਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਬਨਾਹੇ ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿਓ ਪ੍ਰਭਿਆਪ ਅਨਕ ਵਿਸਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ਏਕ ਰਾਜ ਰਾਜ ਕਰ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਵਰ ਨਾਮ ਸਾਜ ਨਾ ਕੀ ਮਾਂਗੋ ਤੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਰਸਰਦਾ ਪੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਤਿਆਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਸੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਿੱਠ ਮਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਅਰਸ ਪਾਵੇ ਬਿਰਲਾ ਹੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਫੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਨੇ ਸੋ ਪਰ ਪਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੰਗ ਉਪਜੇ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਨ ਆਣ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਧਿਰ ਲਾਗ ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤਲੇ ਜਿਨਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਿਆਲ ਸੇਵਕੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਗ ਜਨ ਪਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਪਰਮ ਗਿਆ ਇਚ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਵ ਰਿਆ ਸਾ ਸੰਗ ਜੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿੰਨ ਲਿਆ ਮਲਾਈ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਨੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਅਗਣ ਮੇ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਰਾਖੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਵਿਖਤੇ ਕਾਢੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਾਤੇ ਵਜਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਣ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ ਆ ਤਿਆਗ ਜਪੁਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ ਆਪ ਜਪੋ ਔਰਾ ਨਾਚ ਪਾਓ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਰਨਾਮ ਬੂਟ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਜਾਓ ਮੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰ ਇਹੀ ਸਾਉ ਨੇਤਰ ਪੇਖ ਦਰਸਕ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਕਸੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਤੋਏ ਭਗਜ ਨਾ ਕੇ ਮਨ ਤਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗ ਏਕ ਵਸ ਦੀਜੇ ਕਰਮਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ ਸਰਵ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਛੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤਵਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਸੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਏ ਮਨੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭਾਣ ਸਰਬੇ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਣਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬੜਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਟ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਪੜੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸੋ ਬਾਤਨਵੰਤ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦਿਓ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ ਲੋ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸੁਮਤੀ ਆਪੋ ਪਾਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਪਾਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਅਕਾਰ ਕਛ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਪਾਪ ਪੁਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਣਾ ਪਾਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ਜਬ ਏਕੈ ਹਰ ਅਗਮ ਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਇ ਜਬ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ
0: तब कवन निडर कवन कत डरे, आपन चलताप करने हार। नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभिगत्य अगुचिर प्रभिका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंदर बादे। अपना पापी चर जा, नानक अपन रूप आपी उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे भूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपह परवीन, तह वेद कतेव कहा कोचीन। जब अपन आप आपुर तारे, तो सगन अप सगन कहा बिचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप। जय अचल छेद भेद समाया, ऊहा किसह व्यापत माया। आपस को आपह आदेश, तेह गुण का नाही प्रवेश। जय कह एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप आप तियारा, तह कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा, नानक आपस को आपह पहुँचा। जय आपरचु परपंच अकार, तेहु गुण में है किन्नो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, हमें मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान। अपन खेल आप कर दिखे, खेल संकुचे तो नानक कह। जय अभिगत।

जीजंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार, नानके को पसरिया दूजा कह दस्तार। अष्टपदी आप कथय आप सुनने हार, आप कहे का विस्तार। जात पावे ता सृष्ट उपाए, आपने पाने ले समाए। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, आपन सू सब जगत परोए। जाको प्रभ जी आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंत्र सबता कै हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोए न मारै, सो मुआ जिस मनहु बिसारै। तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाकै सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ।

अपन संग्रह था कि गत मित कही न जाए। दूसरे हुए तसो जी पाए तिसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिसदा सुख होया मिलाए ले प्रभु सोए उतनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस पर सासव जग तराया जन आवन कहे सुहाव जन कह समित आवह ना आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक

पार ब्रह्म निकट कर पेक सा सिमरु गोबिंद मनंतर की उतरे चिंद आसुनित्या गोत्रंग संजना की तूर मन वांग आप छोड़ बेनती करहु सा संग अगन सागर तरहु हर तन के पर लिहु पंडार नान गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहजानंद सा संग पज परमानंद नरक निवार उदारु जीव गुण गोविंद अमृत रस पीयु चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है धारु उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप करै लोक कै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदर तिन कै साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सात संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उसल करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुनाम जिस मन बसै सोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होय प्रधान पुरख प्रगट सब लोय सब त्यूच पाए स्थान बहुर न होवै आवन जान हर तन खाट चलै जन सोय नानक जिसै प्राप्त होय खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कैमत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् काविता समदर्शी एक दृष्टिता फल तिस जन कै मुख पनी गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोय सब जुग मैता की गत होय गुण गोविंद नाम धुन वाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट परासा संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै जाके मस्त कर्म प्रपाए सा सर नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन मरणता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहि समानी दुख रोग बिन से पै भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुखमनी सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम वाहिगुरु जी का खालसा वाह

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुप है चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार।

हाय कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ सेव साकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यो लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार न जाने ततै सार न जाने गुरु बाजहु ततै सार न जाने तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण विहाणी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रहण विहाणी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है ए वडदाता जे अगन मैं आहार पहुंचावे ओसनो के हो पोहे ना सकी जिस नौ अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक ए वडदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया जात इस पाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह पुजै पाउ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किस विटह रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपी है विचों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मन वन जारा हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा कहे नानक हर रास मेरी मन होआ वन जारा ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पलै न पाए हर रस पाए पलै पीए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाई है सतगुरु मिलै जिस आए कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरे आ हर तुम मैं जोत रखी तातू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच तातू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझे आ ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तातू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हार तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया एह विस संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जावे खा हर एक है हर बिन अवर न कोई
कह नानक ए नेत्र अंध से सात गुर मिले देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए, साचा सुनने नो पठाए शरीर लाए सुन हो सात बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हो रसना रस समाणी, सच अलख वेडाणी ताकी गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए। हार जियो गुफा अंदर राखु कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाउ नावने तो तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला सच कर गावो, गावो ता सोहेला कर सच जिथे सदा सच ते आवहे। सचो ते आवै जा तुद पावै गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे। कह नानक सच सोहेला सच कर गावहे। आनंद सुनो।

दुख मन वसै, दुख संसार है खोवे, गुर नावनिध दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै, सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए।

0: सत्य सप्ताम सत्य सुजोल सची तेरी तृप्ति सत्य चाला सची तेरी कुदर सत्य पासा नानक सत्य ध्यान सच जो मृत मैं सो कठिन कठिन महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल था वड्डी वड्याई जाने अलाव वड्डी वड्याई पूजे सम भाव वड्डी वड्याई जा पुछने दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कारण कथने जाय कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
2: ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इकना हुक्म समाले

विषमादृति विषमाद काणी विषमाद चांद के प्राणी विषमाद संयोग विषमाद वियोग विषमाद भोग विषमाद भोग विषमाद तृप्ति विषमाद चाला।

0: इत संजम दुख जाए पौड़ी।
1: सेव कीती संतोखी जिन सचो सस्ती आया, उन निबंधे पैण रखियो कर सुखी धर्म कमा।

0: गुरु गृहनिवास अंतर जमी तंत्र सहित से गुरु गुरु सहज मारा आओ जी दीवाणी के सत्कार जो बेअंत गुरु सिख माई भाई रो आओ जी दीवाणी के सत्कार जो बेअंत मार पेटा कर देव जन सर्व शिक्षितान प्रोसादान चन्ना कमा प्यार बुझना खजाने पर पुरकने सो आओ गुरु प्यारी सत्संग जी केतन दी इथे समाप्ति हुई भुला चुका दिखी मकनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करिए अज दे श्री महाप दे विचार सत्कार योग यानी बचित्र सिंह जी उन्हां पासों गुर इतिहास सिख इतिहास सरवण करिए दस रो फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: Thank you.

परम सम्मान योग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोदी च हाजरी भर रही गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत जीओ करो रसना पवित्र आखो।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाज भगवती पाशे दसवीं प्रथम भगवती से मर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से वे सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय के सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दया रहता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसम पाची ने पुत्र साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पहादार तैंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु। गरीबनवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चारे मुक्त हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपिया बन चकिया दे चलाई ते वाहे देख ढेट किया तेना प्यार है त्यार नहीं कमाई का तैंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लगाईया चरखड़िया के चढ़े आर न चराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी देखे सत्संग आया धना नहीं कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारे का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता है चित आवन का सदका सब सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब तहन चरिया देव देव की फतेह पंथ की पहज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केह दान रायत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकिया चंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत जी मत पत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु जी बलवाज पंथे सदा सहाय दता जियो गुरुद्वारा ननकाना साहेब पंजा साहब सुर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आपके पंथ में छोड़िया गया प्रदर्शन राज सेवा संभाल सकता अपने खालसा जी बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसरे दे आसरे गुरु धन तान गुरु ग्रंथ दतार जियो दुए कर जोड़ करो अरदास तुत पावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आप जी के चरण कामना अरदास में आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पाठ हुए संगतान दर्शन दर दे के निहाल दतार जियो बेहद बाणियों के पाठ हुए अज में रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वार कीर्तन किए ने विद्वान वीर ने अज के हुक्मनामे की कथा विचार की कृपा करो वो यहां भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतान के हिरदे निशान की कृपालता करो जी अगो तो शोध से पुत्र बाणी विचार बल बुद्धि बख्शिश करो। वीर महाराज इस खुशी में आप जी दखियां दसा पितर कड़ाप शादी देख तैयार करके हाथ ततार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद साह संगत की रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोकों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गरीब नवाज आप दखियां दातों जो नगरा तुर सवार प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर टहलिए सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाड़ी गल बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शन की पालता करो। गरीब नवाज जी अमृत वे तो लैके दर से आई साफ संगत दर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ संगतों का दर देते फुल बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गरीब नवाज जीओ से कौम खालसा पंथ एकता सुभाग प्यार की बख्शिश करके सतम रोज दाल बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फदे बख्शन की पालता करो जी। गरीब नवाज कृपा करो दूर दराज कारण बैठिया लाइव खत्म की श्रमण करिए सारी संगत हाल के प्रवान करो घड़िया लिख लाओ गिरफ्तार पिता जी आपने बख्शी की संगत उदो बख्शे ने संगत आदि चरणा धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया गुरु कर गुरु कर संगतार संगत माया पेटा कारी चरणा प्रवान करो बख्शिया साहब की कमाइया सबल करो कार्यवादार सब संगत दुभकामना सबला पूरी करो जी सार मेहनत करो सेवा प्रवान करो भुला चुका माई बख्शो पवित्र गुना में बख्शे करो प्रवान लेडी वास्ते आज पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो शोधे के पुत्र सेवा लैंड की वार्ता करो रेंदे कार सवार के चरणा धनवाद बनाओ से ही प्यारे मेरे जी नाम जता हा नानक नाम चढ़ती करा तेरे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पई अकाल की तभी चलायू सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो

जो मन चित एक अराध दे, तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े, तुदनो सब त्याए दी, सेथाए पए जो साहिब लोड़े, जो बिन सतगुर सेवे खादे पहन दे, से मुए मर जम्मे कोड़े, ओए हाजिर मिठा बोल दे, बाहर विस कड्डे मुख कोले, मन खोटे दईए विछोड़े। श्लोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा, तिन वेमुख वेमुख नो पाया, पास न देई कोई बहन जगत में, गुह पड़ सगवी मल लाए मन मुख आया।

जिथे वचन हो वंदे प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल कहंदे वे लोचन ओना गुणैनो वे अहंकार सड़ंदे वे विचारे क्या करह जा भाव तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करह निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापे आ से फिर है पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे श्लोक महला चौथा।

तिन निंदक दुष्ट सब तारे। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कारज सब सवारे। जो इच्छा सो फल पाईसी, पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे। सब निदान सतगुरु विच, जिसे अंदर हर उर धारे। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस लिखिया लिखत लिलारे। जन नानक मांगे धूड़ दिन, जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप

कराई। सतगुर की वडियाई नित चढ़ै सुवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए। अन दिन नाम जपहु गुर सिखहु, हर करता सतगुर करी वसाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जा।

तिस अप्पड़ को न सकाई, नावै की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़ै चढ़ाही महला चौथा। जे हुंदा गुरु

पौड़ी। एहो शरीर सब धर्म है, जिसे अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डै खोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, एक दिख

जिन निर्भउ नाम ते आया तिन कौ भउ कोई नाही, हर उत्तम तिनी सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पैनाइय है जिन हर बुठा मन माही, कोई आप तरे सब कुटुंब स्यो तिन पिछे सब जगत चढ़ाही। जन

छड़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक धूवै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर पुर धारिया। सच सच्चा सतगुर पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जा डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदर हो मन साधार।

गुरमुख गुण विहाजी है, मल होमै कड्डै धोए, सच वणंजह रंग स्यों सच सौदा होए, टोटा मूल नया वई लाहा हर भावै सोए, नानक तिन सच वणजिया जिना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी साला ही सच सालाहना, सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मन वसै, सच सच्चा हर रखवाले, सच सच्चा जिनी

भाग सुलखणी जे खसमे चित करे भाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे सच्चा शब्द पतार है।

जह पूज कराव है। सतगुर कौ सृजन हारिया कोई विछुड़ जाए, सतगुरु पास हो तिस काला मुह जम मारिया, किसी अग्गे पिछे ढोई नाहीं।

महला चौथा। सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर तारिया, सतगुरु नो अपड़ कोई न सकई जिस वल सिरजन हारिया।

पौड़ी सच सच्चे के जन भगत है, सच सच्चा जिनी आराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया, तिन अंदरों ही सच लादिया, सच साहिब सच

जो भावै त्यो रख तू, जन नानक नाम बख्श महला तीजा। मन मुख अहंकारी महल न जाने, खिन आगे खिन पीछे, सदा बुलाइए महल न आवे, क्यों कर दरगह सिझै।

पौड़ी सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मने जा सतगुर का मन मनिया ता पाप कसम्मल भन्नी।

मन वेखो को निरजास कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सचियार सिख बैठे सतगुर पास विच सच्चे को।

समय की समाप्ति है। कीर्तन करते हैं, बेअंत खुला हो गई हैं। आपसी बख्शन जोग हो, बख्श लेना दाता जी, दया करन, कर्म करन, तरस करन, बख्शिश करन, अपनी रहमत भरी निगाह नाल साडे उत्ते बख्शिश भरिया खजाना नाम दियां दातां साडी झोली विच पाउण। मंगदे सारा कुछ हां, पर जिहड़े देण वाले नूं भी मंग लैंदे ने, इंज कह लईए भी दाते नूं ही मंग लैंदे ने। दातां फिर मगर ही तुरियां आउंदियां ने। आओ अगलियां गुरमत विचारां साडे अपने पंथ प्रसिद्ध कथावाचक आप जी के सन्मुख होणगे, बहुत मिठ बोलड़े प्यार वाले जिन्हां नूं सतगुरां ने तुट के रहमतां दित्तियां हन। भाई साहब जी, भाई वरिंदरपाल सिंह जी पहला भी हाजरियां भर के गए, वह आप जी के सन्मुख होणगे, गुरु दियां रहमतां चोली विच पाउणगे। दासरियां नूं असीस बख्शिश करो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का

जो समा हुक्म होया सी समय दी समाप्ति है। सतगुरु सबना दिया हाजरियां दर प्रवान करन, एक जकारा वीरां नूं बेनती चढ़दी कला दा ते एक जकारा पैणां नूं करो कृपा सारे। समूह प्रबंधक साहिबान धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिन्ना शुक्राना करिए थोड़ा है। डॉक्टर गुरनाम सिंह, वीर गुरप्रीत सिंह, वीर राजविंदर सिंह जी उस्ताद जी और भाई निर्मल सिंह जी जिन्हों के उदम सदका समूह प्रबंधक साहिबाना का सदका अपना सारिया ने कि जो महाराज की बाणी सारी रागों में गाई है, निरोल रागों में गा के हाजरी भरी है। आओ हुण समाप्ति है, सलोक पढ़ांगे नाल ही अरदास विच आपां जुड़ा। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया केलै सगल जगत।